जाको ठाकुर ऊंचा होई, सोजन पर घर जात ना सोई। सो साहिब रया भरपूर, सदा संग नाही प्रभ दूर। कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके। सब कोई कहे जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता। कहत कबीर पूरन जग सोई,

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो और अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पै कहिए,

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा, ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। तेरो जन होए सो एकत डोले, तीन भवन पर छा जा, हाथ

धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच बखाना।

0: गुर शब्द निवासा,
1: अमृत जुगे गुर शब्द निवासा।
0: सर्वर हंस धुरे ही मेला, सर्वर हंस

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

चन कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चन कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चन पखार करम गुर सेवा बार जाओ लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया चंदा निक पैसलिया।

हर हर चंद्र देव धारे, हर हर चंद्र देव धारे, शिव स्वामी सतगुर अपना काज सब हमारे, बंदन पूजा परमेश्वर हर कीर्तन तत विचारे।

अपने जीवन विच जदों जदों भी बोले जो भी शब्द मुख चो उचारण कीते ओ तत्काल परमात्मा दी दरगाह विच प्रवान होए। साहिबां दा फरमान है गुरबाणी द्वारा, गुरु नानक बोले दरगहें परवान।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार अवगुण को न चितार गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता। जानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच। सांझी गुरु नाल

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है भाई, मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान, एक दखना हो तै पै मांगू, देवो अपना नाम, मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

धर्म बहालिया उथे सचे ही सच निबड़े चुनमख कड़े जजमालिया थाओ न पाए न कूड़िया मौका ले दो चालिया तेरा

बिंद्रा बन में रंग किया। कल में भेदिय चरण हुआ नाम खुदाई अलो पया, नील वस्त्र ले कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया।

न पावे पौड़ी कपड़ू सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुक्म किए मन पावदे रा पीड़े अगे जावना

इसलिए सिमरन ही तेनू बचा सकेगा, सिमरन ही तेरा बेड़ा पार कर सकेगा। तेरे कोल सिमरन होवेगा, इस संसार विच भी आदर पावेगा, दरगाह विच भी आदर पावेगा, फिर रे रे

रेजी अन लज लाज तो नाई हर तज कत काऊ के जाई जाको ठाकुर ऊंचा होई सोजन पर घर जात ना सोई सो साहिब रया भरपूर सदा संग नाही प्रभु दूर कवला चरण सरन है जाके कह जन का नाही घर ताके सब कोई कहे जास की बाता सो समरथ निज पद है दाता कैत कबीर पूरन जग सोई जा

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए,

जे ताहर ने फल सब खाल गवास मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे ता आगे अपनी बिरथा

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है, पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहे। बाबा काशी गए, बनारस गए, हरिद्वार गए, गया जी गए। क्यों गए? भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उत्थे अपने विचार सुणांदे सन, लोगां नूं सिद्धे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक, क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी, ते लागे अचल बटाला है। उस सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़, शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी, ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया, कहन लगे मरदाने आ चल। गरीब नवाज पातशाह सत बचन, पाई साहब भाई गुरदास

जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिदे विच लोक माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पाउणी भुल गई ना उताल रहा ना उराग रहा।

जिस वेले बंदे नूं अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वो झगड़े ते उतर आंदा, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दी। भाई साहब भाई गुरदास जी

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

भाई तू क्यों रोना है? ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। जीरान कहते ने कब्रस्तान कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

एक वक्त अन्न भी नहीं रहा ता घर दे बर्तन वेच के बस्तर वेच के घूमनिया का प्रसाद भी चलता रहा ता भी परिवार नहीं खेड़ा बनया रे पूजा सारी उधर चली जावे परवाह नहीं सेवा सारी इधर आ जावे ऐसे च आनंद है सेवा इधर आनी चाहिए है पूजा जी मर्जी लै जा धन जी की मर्जी लै जा ते सेवा विच रते हुए बुले शाह गया सी ना दर्शन कर गया है वेखिया माया दी रेल पेल तो कोई नहीं पर एक गल बड़ी वधिया है सरोवर के पौड़ा च इटा लग रही है लंगर चल रहा है ते जिसले मथा टेकन गया महाराज की हजूरी च उत्थे कीर्तन भी हो रहे वो कीर्तन दियां मस्तियां वेखियां जिहड़ियां अज तक कायम ने उस वेले दियां मस्तियां अज तक कायम ने ठाकुर रविंद्रनाथ युग दे महान फिलासफर गए कहन लगे एवें लोकी कहंदे ने अगर फरदोस बरजमी अस्त हमी अस्त कश्मीर नूं कहंदे ने कहंदे गलत कहंदे ने स्वर्ग किसी ने वेखना ते आ पिया है धन गुरु अर्जन साहब का कायम किया स्वर्ग तो इत्थे है हरिदास कहंदे ने कहंदे ने हरि मंदिर बैकुंठ को तोल्यो हरि हरिदास हरिदास कहंदे ने रब ने एक बार ऐसा किया तकड़ी के दो छाबिया च पा के एक पासे बैकुंठ रख दिता एक पासे हरिमंदर रख दिता कहंदे ने गौरा सो धरती रहो हौरा चढ़ो आकाश इन्हों दो जरा भारा से धरती से रह गया हरिमंदर साहब से बैकुंठ क्योंकि बहुत हौला से आकाशा च रह गया वह छाबा उपर उठ गया बुले शाह ने उस हरिमंदर च बैठ के स्वाद लिया रस लिया आनंद लिया जिसले निकलिया ना बहर झूमदा झूमदा कहिंदा इट खड़के दुक्कड़ वजे नाले तपे चुल्हा नाले मेरा सतगुर राजी ते नाले राजी बुला स्वाद आ गया कहिंदा इत्थे आ नाले तो कहिंदा ढोलका छैने खड़कदे ने संगीत पिया चलदा है नाले उसारियां लगियां होईयां ने पा उसारी बहुत वड्डी गल कुछ बन रहा है कुछ उसर रहा है कंस्ट्रक्टिव गल चल रही है कहिंदा इधरले पासे कुछ उसर रहा है कुछ गाया जा रहा है आत्मक उसारी भी हो रही है नाले कहिंदा शरीरक उसारी की गल भी है लंगर भी चलता पे चुल्हे भी तपदे पे ने कहिंदे ने इहदे च होर की लैणा है ये तिन्ने काम चलते रहन तिन्ने पक्ष की उसारी होंदी रहे आत्मक उसारी शरीरक उसारी संसारक उसारी धन गुरु अर्जन साहब तेरे दर ते तिन्ने उसारियां चलदियां ओ तिन्ना उसारियां नूं करदे होए क्योंकि जेड़ा बंदा झोरिया च पै जाए उसारदा नहीं फिर उठा हुंदा है ते शुकर च पै धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह सानूं शुकर दा सबक देंदे ने आपां पढ़दे आ ने हर का नाम हृदय नित ध्याई कुछ लोग ऐसे भी होंदे जिहड़े कहिंदे ने इह वी मालक दी रज़ा विच जिहड़ा गुरुद्वारे नहीं आया जांदा अमृत वेले नहीं उठांदा ऐसी गल नहीं रीझ तां कर तूं अरदास तां कर धन गुरु अर्जन साहब अरदास करदे अरदास साडी झोली पाउंदे ने हर का नाम हृदय नित ध्याई प्रभु दा नाम नित हिरदे च ध्याउंदा रवां क्योंकि इहदी बरकत इह पवेगी कि संगी साथी सगल तराई गुरु मेरा संग सदा है नाले सिमर सिमर तिसदा समाले फिर वो अवस्था भी आ जाएगी तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे मैं ता मंगदा तेरे को नाम ए मंगनो मैं तेरी रजारी उड़ीकनी भी तू नाम कदों देवेगा ए ता मेरी मंग है चोली मैं फैलावांगा पा देवे तेरी रजा दुख पा देवे सुख पा देवे संसारी पद्धर दा पर नाम विच जो सुख मैं लेना है वह मैं मंगागा जी वह मंगिया जा रहा और भुखा विच दुखा विच तोटियां विच काटियां विच संसारी पद्धर तो वेखे जांदे काटियां विच ओ अवस्था टिकी होई के मालिक जो तू करे सोई परवान साचे साहिब तेरा सच फुरमान मैनू सिर मथे सब कुछ परवान है जो पिता जी ने कहा सी जे सुख दे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे तिहाई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई ओ अवस्था लेके बैठे और सब किसान पै देंदे ने पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन तांकी ओट गही जाए जिन धारे ब्रह्मांड खंड जिन्हें सारा कुछ रचिया है ना हर तांको नाम जपी जाए रे मन की मत त्यागो हर जन तू ए ना सोच के मेरा हुक्म कौन मने तू गुरु के हुक्म मनन दी गल सुन हुक्म बूझ सुख पाई है रे जो प्रभ करे फिर तेन प्रभु का हुक्म मनना भी आ जाए जिस रजाज जिस हाल च रखे साई लोग जानता सी ना ते पैरा थले आ गया केले दा छिलका डिग पिया लोकी बड़े हसे मुस्कुराउंदा है वो भी उठ बैठा सट तां लगी हो किसे पुछिया कहिंदा हसी जाना है
साई लोका डिगा है सट लगी हसी जाना कह लगा अगे जिस वे एक बंदा डिगया सी उस वे तुसी भी सारे हसे सी मैं भी हसया सी उस हासे हासे विच मेरा भी पैर तिलक गया मैं डिग पिया तुसी उदो भी हसे सी हुण भी हसे उदो मैं भी हसया सी कह लगे हुण तां तू डिगा हुण क्यों हसना कहिंदा हुण इस करके हसना कि उदो भी हासा नसीब डिगण तो पहला भी हासा नसीब होया ते तुहानू सारयां नूं हसा दित्ता दो दो वारी होर की लैणा मैनू सट लगी इस गल की परवाह नहीं तुहाडा जी तां खुश हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੱਸ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਖੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਲਿਓ ਛੱਡ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਤਿਹਾਈ ਹੈ ਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੜੀ ਹੈ ਕੋਟ ਪਤੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਖਿਣਮੈ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਸਵਾਮੀ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸੈ ਨਵਾਜਿਆ ਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸੈ ਨਵਾਜੇ ਰੇ ਸਭ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰੇ ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਕਰਦੇ ਪੂਰ ਰਹੋ ਰਤਨਾਗਰ ਰੇ ਰਤਨਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਉਹ ਸਾਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਚਕ ਜਾਚੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਸੋਈ ਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਜਾਣਦੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਏ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀਏ ਜੇ ਨਾਮ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪੈਰ ਹਟਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾਮ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਝੋਲੀ ਅੱਡੋ ਤੇ ਮੰਗ ਲਓ।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेडे बोल बोल के मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा। साहिबा ने बाणी विच कथन कीता।

वो धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

पर तू अपने नाल भी अपराध कर रहे। किस तरह? नाम ना जपे से आत्मघाती। जो मनुख नाम नहीं जपते, स्मरण नहीं करते, वो अपनी आत्मा का आत्मघात करके अपराध कर रहे हैं।

कोई ना रखना। विश्वास घाती अकिरत कण, विश्वास घाती किसनु कहिंदे ने, जिहड़ा किसे नु प्यार विच लिया के बसा के मारे, अपना बना के मारे।